परम पद पाया। सुके काष्ठ हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किस की तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर। काहे मन पाओ करिया, उड़े उड़े आवै सह कोसा,

सोपुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संतो जी सब

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियों बाच बेनती चौपाई।

साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो

समझियो हमारा। नमस्कार ते सही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन कहो सब गुण सुख दियो सतरन कहो पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरे अस्थूला

पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौआख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे ओ सब तुहे बखाने दोहरा

अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो, जी को खावे जी को पुंचे, तिसका हुए उदारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रखी उर तारो,

गुण कह कह गौम तू साहिब बरन ना साक तू ठाकुर ऊच भगवान तुमरी महिमा बरन ना साक

निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरवन्ना, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तो साहिब गुणी निधन्ना, तुम्हारी महिमा बरन न सको, तो ठाकुर उच्च भगवन

संसार विकार संसिन तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस ही जगाए पियाए रासिया कथ कथा तिन जानी जहाँ कौ आए सोई बेहाजो हर गुरते मन ही बसिरा

अवसर भी हो जाते हैं। कह मान ले मेरो मन मूर्ख अजू मैं समझ सिख दे मारियो नानक पौ पार पर जो गावे प्रभु हर जश्न रे मना गाए जो संग

गा वह खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे सही तुदनु गा वह जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गाव से मैं चेतना अपन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब सचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जनसी माया जिनु उपाई कर कर वेखा कीता अपना ज्योतिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर सी हुकुम न करना जाई सो पातशाह हो साह पातशाह नानक रहण रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करह वे भूत खिमथा काल कुआरी काया जो तरंडा प्रतीताई पंथी सर जमाती मन जीता जग जीता देश तसया देश आदनीना नादन आप जुग जुग एको वेश भुगता ग्यान दया भंडारण घटकट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जागीर सिरिद सिद्ध अवरा साध संजोग जोग कार चला वह लिखिया वह भागवा देस सया दे साध नीला नाद नाथ जुग जुग एको वेस एकाव माई जुक्त व्याई तिन चले प्रवाणिक संसारी भंडारी कलाई दी बाण जिप तिस भावै ते वै चला वै जिव हुवै फरमाण हो वेखाय ओना नदर नावै बहुताय हो विडाणु आदेश तसया देश साध अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेस आ सुन लोए लोए भंडार जुक्ष पाया सो एकावार कर कर वेखै सृजनहार ना

फिर वेख दे भिव न जाने जे बेद और कतेव रूपरंग न जात पात सुजाने के जेब तात्मात न जात जाकर जन मन बिहीन चक्र बकर फिरा चित्र चकमान ही पुरतीन।

चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुक्ते स्वयं सुपं सर्वदा सर्वजुगते

गुरु ग्रीव निवार। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दैर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा हो तब चरणन मन रहे हमारा अपना ज्ञान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम का बहु आप हाद मोहे बचाव सुखी बसै मोरो परिवार से सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए। सब बैरन कौआ संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो वरचा हूं सो तुम ते पाऊं से सिख हमारे तारिया। चुन चुन सत्र हमारी मारिया है आप हाद मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया हूँ जो सदा हमारे पच्छा। सीरियस तो जो करियो रक्षा राख रखन हारे साहिब संसाए प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विसर प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जमन काल योगी सब की यो वेद राज ब्रह्मा जो थी यो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार रहता है हमारा। जवन काल सब जगत मनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसीह को हमारी सकल प्रजा जनि आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को परमो बद कियो। घाट घाट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर असूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाना है कट कट के पट पट की जानना है। जब उद कर करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा। जब या कर कर तुह कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा है आप अपनी बूझ उचार है तुम सभी तेरा निरालम जान भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब आदा नीना नाद असमता का मूल उचारत भेदा जाकु भेव न पावत भेदा ताका ओ कर पाहन अनुमान महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सिव निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरन भिन्न भिन्न तो हितेती तुमरा लखा ना जाय पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक कै रूप अनूप रूपा रंग भयो राव कही भूपा नज जेर से तिजकिनी उत्पल खान। बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिम भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंप हुआ जुगा स्वरूप स्वयं पवे अवरक्षा मेरी तुम करो। सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तु तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट संतारे जो कल को एक बार त्या है ताकि काल निक नहीं है। रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट

खड़ग केत मैं शरण तिहारी आथा दले हो बारी सर्व ठौर मोहो साई दुष्ट दोख ते ले बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता अकिल विक सकल दे को हरता दुष्ट दोखियन कोशय करता श्री अस्तु जब पह दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन मांझ फल पावै सोई दुख न त साहिब आप तो कोई अड़िल। सुने गुंग जो यह सुरस न पावई सुने मूढ़ चतराय चतुरता आवई दुख दर्द भाऊ निक न तिन नर के रह हो जो या कि एक बार चौपई को कह चौपई। संबत सत्रह सहस पुण्य जय अर्थ सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रवे वारा तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधारा सोया। पाए गहे जपते तुमरे तपते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब वेद कहे हम एक न जाने ओ

गोविंद दास तुहार सतनाम। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी गुरु गरीब निवाज। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परियां सब गावण वाइया सब दो तंगा वो हरी केरा

जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवे। प्रथम भगवती सिमर कै गुर।

सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदाखें लग करोड़ सच्चा सबदान सच्चे सबजोड़ सच्ची तेरी शिफ्त सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह।

जैत शरी महला पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रवतारु हर प्रेम भगत को नेह रहाउ अनक सुख चकवी नहीं चाहत

परम सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल चवर तखत छत्र ते मालक गुरता गद्दी ते सुभाईमान जाग दी जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत बख्शिश की है जो अज इस पावन दरबार के दो परिवारों का सुमेल होने जा रहा है। इस खुशी के मौके उत्ते दास खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूरों नेड़े आए हुए सारे पतवंत सज्जणा का तहे दिलों धन्यवाद अते निघा जीओ ऐ कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर आई वुड लाइक टू वार्मली वेलकम ईच वन ऑफ यू हू केम हियर ऑल द वे टू ब्लेस दिस ब्यूटीफुल कपल is now sitting in front of Shri Guru Granth Sahib Maharaj Ji. Thank you so much everybody for joining us today. It's a really special day for the couple and your presence makes it even more special. Today it's not just a ceremony, but it's a beautiful journey of two souls merging into one in the presence of Guru Granth Sahib Maharaj. Satsanga Ji, as we're sitting in this darbar with Guru Sahib as the supreme power, it becomes a collective responsibility to maintain the integrity of the darbar as well, which means absolutely no talking, listening to the kirtan and paying attention. For your convenience, we've got screens on both sides. For those who can read the Gurbani, please try to read and sing along. And for everybody else, we've got screen and translations in English. Satsangi ji, sab to pehla zaruri benti hai, apne jo niji vichar han gallan baatan ne कृपा करके उन्होंने संकोचन का यतन करो, चुप का दान बख्शिश करो। असी अपना ध्यान अपनी सुरत शब्द के जोड़न का यतन करना है। जिथे असी सतगुरों के चरणों में सुभाग जोड़ी के आने वाले भविख की अरदास बेनती करनी है, उत्थे ही सतगुरों पासों असी अपनी झोलियां खुशियां ते खेड़ियां दे नाल भर के ले जानियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखों नूं बाणी कंठ है उन्होंने चरणों में बेनती है कि वह भी गुरबाणी के पाठ कर, बाकी संगतों वास्ते स्क्रीन लगियां ने वह भी नाल फॉलो कर सकते हैं। आओ हुण दोहां ही परिवारों की जानकारी दास साहब जी ने सन्मुख रख रहा है। काका जी अगम अपार सिंह बड़ियाल, सपुत्र सरदार परोपकार सिंह बड़ियाल, माता जी हरिंदर कौर बड़ियाल, परिवार का पिछलेरा पिंड पिंड लहली खुरद जिला हुशियारपुर पंजाब, इस वक्त ये परिवार मिसिसोगा ओंटारियो तो बिलोंग करता है। इन्हां दे दादा जी सरदार गुरशरण सिंह जी बड़ियाल, दादी जी का नाम माता सुरजीत कौर बड़ियाल है। इन्हां दे नाना जी सरदार जसवीर सिंह जी अटवाल, नानी जी माता जगवीर कौर अटवाल है। ए सी लड़का परिवार। कमिंग टू द ब्राइड, बीबा जी गुरपुनीत कौर चाहल, सपुत्री सरदार अमरजीत सिंह चाहल, माता जी परमजीत कौर चाहल। परिवार का पिछलेरा पिंड पिंड कजौली जिला रोपड़ पंजाब, इस वक्त परिवार सरी बीसी का निवासी है। गुरपुनीत कौर के दादा जी सरदार प्रीतम सिंह जी चाहल, दादी जी का नाम माता सुरजीत कौर चाहल है। इन्हों के नाना जी सरदार बचन सिंह कणगस, नानी जी का नाम माता जसवंत कौर कणगस है। सो यी दोनों ही परिवारों की संखेप रूप में जानकारी। हुण सतसंग जी आरंभता की अरदास होगी, जिस विच केवल सुभाग जोड़ी ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਐਂਡ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫੋਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अविनाशी जीवन को दाता सिमृत सब मल खोई गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई अविनाशी जीवन को दाता सिमृत सब मल खोई गुण निधान भगतन को बर्तन

दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम न होई। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंतना जाई लख्या रहा। जात में जोत जोत में है जाता कलकला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सत्स वाले।